0: Om Shri Sai Ram. Most humble pranams at thy lotus feet, most beloved Bhagwan, you have been guiding us in so many ways at all times. One of the most easiest roads to understand you, as told by you, is the path of Namasmarana. Bhagwan, we feel it is our duty to enhance our efforts on the path shown by you. Today, we are humbly trying to take a step towards understanding the Nirguna Nirakara Swarupa of yours. The instrumental music through Tali Yatra is an effort to understand the Nirguna Nirakara Swarupa of you, Sai. We pray at thy lotus feet to bless this humble effort presented by Pandit Suresh Talwalkarji and his group. Om Sri Sai Ram.
1: Pranam. आप लोगों के सामने मैं शिव वंदना प्रस्तुत कर रहा हूं. उसी में शंकर महादेव मल्हार राग की बंदिश प्रस्तुत करके आपके सामने रख रहा हूं. आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है स्वामी जी के सामने मैं सेवा करने का, सब लोगों के साथ सेवा कर रहा हूं. After long time, 1973 में स्वामी जी के सामने मुझे सेवा करने का मौका आया था, उसके बाद आज कर रहा हूं मैं. धन्यवाद.

अनंत कोटि प्रणाम्स एट द डिवाइन लोटस फीट ऑफ आर मोस्ट बिलवड भगवान. थैंक यू भरत बाला सर फॉर दिस इंसाइटफुल एंड इंस्पायरिंग वर्ड्स. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी नाउ कम टू द मोस्ट अवेटेड मोमेंट ऑफ दिस फेस्टिवल. विथ योर परमिशन स्वामी, वी कमेंस द अवार्ड सेरेमनी ऑफ द श्री सत्य साई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. May I invite Srimati Himavahini Ratnakar and Srimati Kamala Pandya to kindly come forward and present the award for the best short film in the 16 to 22 years age category.

प्रभु का शरण हो सो भला प्रभु का शरण सोर फला से सुमरे जनिया सुमराय नान ता कैला गो पाए प्रभु का शरण सबते ऊंचा प्रभु का शरण उदरे मूचा प्रभु का